चान प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को कामना को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच कक्का।